अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: कहो तो
1: प्यार
0: जो मलो याद आता सवेरे मोया तल बेला
1: खाबो की दुनिया में दिल की
0: न्यू है द फिल्म दीवाने
1: लेते हैं उसकी आंखों में जो जुनून है उफ, दो दिन बस दो पल की तरह गुजर गए अब बस यही इंतजार है कि वो फिर कब आएगा वो कब

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

मून संस्कार होने वाले हैं 2 जनवरी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: शिकार को बने न वो बुज़दिल,
1: जिसके दिल में उठे न सुनकर किसी के दर्द की हूँ, ऐसी लड़की से अच्छा है ले आओ बंदूक, जिसे मेरा प्रेम हो, मेरा प्रेमी कैसा हो,
0: कैसा हो।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुन वालो। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हो।

तुमसे मिलके, हाँ तुमसे मिलके, फिल्म परिंदा के गीत और गीत के गाने वाले आशा जी एंड सुरेश वड़कर, और ये उजाला रेडियो है। और सुनने वालों, इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए वेबसाइट आप देखें जरूर, उजाला.nl। अब लता जी हिस्सा ले रही है। पुरानी फिल्म अमन से निकाला हुआ गीत।

0: हेलो, दिस इज उजाल रेडियो, डोंट यू मे।
1: मुकेश जी की आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा, ईमानदार, भोला भला आदमी गा रहा है। और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटर कार में या जहां पर भी आप हैं।

है बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो। तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और ब्रांस अफेयर्स पर तू भी नचे तो मैं मिस्टर ब्लैक फन एक्सप्रेस। चलिए ये सुनते हैं मिस्टर ब्लैक की आवाज में ये ना।

0: live vanuit de hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

छह बजकर 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है 12 तारीख अगस्त, और वो भी साल 2026। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। तहदिल से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वैसे तो ऐसे लगता नहीं, लेकिन फिर भी रात है, तो शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए, तीन हफ्ते के बाद आप सभी से फिर हम मिल रहे हैं, और मौका जो आज मिला है फिर आपका दिल बहलाने के लिए, तो लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से आज हम फिर एक बार पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मिलकर हम और आप फिर एक बार कुछ पुराने यादें जो है संगीत के जरिए जो यादें जुड़े हुए हैं, हम और आप मिलकर फिर आज ताजा करेंगे और साथ देंगे मेरे प्यारे से नौ रात्रि में 9 बजे तक। अनवर सदार मलिक ऑफ 12 अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम आप तक पेश करेंगे। मशहूर म्यूजिक कंपोजर और खुद भी गाते हैं, और न जाने कितने लोगों से इन्होंने गीत गवाए हैं। इनकी साज और संगीत पर, खूबसूरत म्यूजिक पर बहुत सारे लोगों ने गाए हैं, और आज का प्लेलिस्ट जो हमने सजा रखे हैं फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ, एक एक निकाल कर रात्रि में 9 बजे तक आपके सेवा में जो हम पेश करेंगे। और मेरे प्यारे सुनाल, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ये प्रोग्राम के दौरान अगर व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे बातें करना चाहोगे, दन काये एपनाड स्टूडियो ऑफ 020-363-0000 020-363-0000, और है आपके कामों काज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो दफ्तर के वक्त पर दफ्तर के तार आप इस्तेमाल कीजिए। सोमवार से शनिवार आपकी फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप करवाना चाहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे, आप दफ्तर को तार करें। फमान रख तो तुम्हें साथ रख, सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक 020-409-0807 020-409-0807, या तो लगातार 24 घंटे मेल के जरिए आप अपना कामकाज दिलवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेल करना है info@ujala.nl। बहुत ही खूबसूरत दिन है मेरे प्यारे सुनो, और क्या कहूँ, दिन जो गुजर रहे हैं आजकल तो बहुत खूबसूरत है। हालांकि बहुत कम बारिश हो रहे हैं, और बारिश की बहुत जरूरत है बारिश का, अगर हो जाए कुछ दिनों के लिए तनखा एक निकला है मेरे प्यारे जिनोनों। लेकिन फिर भी ये मौसम जो चमक रहे हैं, सूरज अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अलहुआ सूरज के बाद आप को हम एक गीत के बाद बताएंगे, आज कुछ भी सुंदर होने वाले हैं, और क्या होने वाले हैं बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं अभी हम बताएंगे एक गीत के बाद। तो फिर एक बार स्वागत है मेरे प्यारे सुनो वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन हम पेश करने जा रहे हैं, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ एक नगमा है, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार गीत गाएंगे, फिल्म का नाम अंगारे, और अंगारे 1986 का एक फिल्म, अनु मलिक संगीतकार। मेरे प्यारे सुनो वालों, एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय बैक टू द फ्यूचर। और अगर आप खा रहे हो तो मेरे प्यारे सुनो वालों, स्वादिष्ट भोजन हो, काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, और अगर सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के विदेश गए हो तो एंजॉय, और यहां विदेश से आए हमारे इस देश में धन ओक लेकर खनी था।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, प्यार कहते हैं जिसे, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं, और वो भी अन्नु मलिक के साथ और संगीत पर। 1986 निहतिन ससन तख्त का फिल्म अंगारे से हमने ये नगमा को निकाले, और एक फिल्म है जिसका डायरेक्टर तो राजेश सेठ है और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, राज बब्बर सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक फिल्म जिसमें स्मिता पटेल भी है, शक्ति कपूर और निरूपा रॉय। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सनम सेमा में जो पेश किया गया है, ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम लाड़े पांडे, और फिर एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अड़ापण से। आज सूरज थोड़ी देर के लिए एकदम गुम होने वाले हैं, चांद उसके आगे आएंगे, बीच में हमारी इस धरती और सूरज के बीच में चांद आएंगे, और सूरज एकदम से चांद के पीछे चला जाएंगे, और कुछ पल के लिए दुनिया में या मेरे हमारे इस देश में थोड़ा सा अंधेरा छाएगा। अलहुवेल लोग कहते हैं कि 90% थोड़ा सा भी अगर सूरज का किरने धरती पर अगर आ जाए तो या दन ब्लाइफ तत लिख दन मेरे के दन इट्स सो फिल फन। लेकिन जैसे कि स्पाइन में और आइसलैंड में, वहां पर 100% उसके आगे आएंगे तो थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा जाएगा, दन वोर तत वाल दोंगर अंधेरा, और उस अंधेरे के वक्त में ठंड भी पड़ सकते हैं और हवा भी थम जाते हैं, बहुत सारी चीज हो जाते हैं। फिलहाल जो लोग यहाँ पर हैं 7 बजे के बाद, अभी 7 बजे रोम क्वाटोवर, हाँ जी 7:15 का वक्त तो शुरू होंगे, और लगभग 8:10 जो व्यतीत होंगे 8:00 तो मान लिया जाए तो ये जो चांद है बिल्कुल सूरज के आगे आ जाएंगे, एंड आई एम हैप्पियर द बेस्ट ऑफ यू। लेकिन उन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्या कहते उसे, इक्लिप्स ब्रिल अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए, और अगर ना हो तो सोनोब्रेल से मत ताकिएगा और ब्लो तो ओख से भी मत देखिएगा। गूगल डिफेंस मोहलक है देखने के लिए एंजॉय, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले बार जब हुआ था हॉलैंड देश में तो वो है 1999 निहत, और मुझे मालूम है वो दिन अभी तक मैंने मेरे होश में है, घर पे था फोर्टोन में, हम उन्हें भरपूर देखा और एंजॉय किए हैं, और आज फिर होने वाले हैं, और अगले बार 2081 में फिर होंगे। अरे बाप रे दादा, दैट इज वेल ही लर्ख लग। तो मेरे प्यारे से लोलो, बहुत ही कम लोगों के नसीब में ये होते हैं, अगर मौका मिला तो ईफ आप जाकर देख सकते हैं, अपने बालकनी में भी आप देख सकते हैं। सुकन न मोयो ओप प्लेक वाड़ी कं कैक, मैं कैक नतुलत नीत मैं तत ब्लोत ओग एंड सीक नीत तो सोचे फन हम सोन ब्रिल व मार के ताक, नहीं दत खात ओक नीत, एक्लिप्स ब्रिल नोडग है दत वेट एक 100%। मेरे प्यारे सुनल, अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं। आज अन्नू मलिक का प्रोग्राम फिर हम सजा रहे हैं, और आज इनके गानों से हम भरपूर आपका सेवा करेंगे।
एक रोमांटिक सॉन्ग समीर का लिखा हुआ अब की बार, जो हम निकालेंगे 2004 का मूवी फिल्म फिदा से। फिदा बहुत खूबसूरत मूवी है और गाने सभी लाजवाब बेमिसाल है। आज के लिए ये नगमा मैं चुन रहा हूँ, जो सोनू निगम और अलीशा चिनाय मिलकर गाएंगे अन्नू मलिक के साज और संगीत पर।

मैंने जिसको चाहा मुझे मिल गया, या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिनोल सोनू निगम और अलीशा चनाय जी का गाया हुआ गीत, समीर का लिखा हुआ और वो भी अन्नू मल्लिक, जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं अन्नू मल्लिक के साथ और संगीत पर। 2004 का मूवी फिदा से हमने नगमा को निकाले। कैन घोष फिल्म का डायरेक्टर, फरदीन खान और करीना कपूर जिन पर यह नगमा पिक्चराइज किया गया है, फिल्म में काम किए हैं। शाहिद कपूर भी है और किम शर्मा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको 11 साल वापस ले चलेंगे। 11 साल वापस 1983, निहत इंद्रियन तख्तक फिल्म का नाम एक जान है हम। एक जान है हम से एक दर्द भरा नगमा जो शायर जी ने लिखा, अन्नू मलिक जिसका संगीतकार है और गाने वाले हैं शब्बीर कुमार। ये नगमा

आएगी और वो भी मुझको बड़ा ही सताएगी। शब्बीर कुमार की आवाज में शायर बड़े अनजान साहेब जी का लिखा हुआ गीत और जिसका संगीतकार अनु मलिक थे। शब्बीर कुमार ने गीत को गाए हैं फ्रॉम द मूवी एक जान है हम, एक जान है हम 1983 का फिल्म देखत इंद्रियन तख्त, राजीव मेहरा जी का डायरेक्ट किया हुआ और जिन पर पिक्चराइज किया गया है मूवी में द ग्रेट शोमैन राज कपूर का सबसे छोटा बेटा राजीव कपूर, ये भी इस दुनिया में अब नहीं है। इन्होंने ये फिल्म में काम किया है राजीव कपूर जी विद देविया राणा, तनुजा, प्राण साहब जी, गुलशन ग्रोवर, इनके चाचा शम्मी कपूर, राकेश बेदी, किरण विरेल, अवतार गिल। और खबर आए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों की जिन लोगों को एक्लिप्स ब्रिल नहीं है, जैसे मैंने कहा आज चांद सूरज के आगे आएंगे, धरती और सूरज के बीच में वो चांद आएंगे और एकदम जो चांद जो है 90% नीदरलैंड में बडेक किया जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा। ये स्पेक्टाकल जो है आप देखना चाहेंगे और आपके पास ब्रिल नहीं, क्योंकि सोना ब्रिल से और ब्लू तो ओख से भी ना माखे ताकिक, तो NOS.NL पर सुना है आप लाइव देख सकते हैं 8:30 से। मेरे प्यारे से नोलो ले चलता हूँ आपको अगले गीत की ओर। मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ, याद आने से ताल 1:30 ओवर द क्लॉक फन हाल्फ सेव, सरे 6:13 जो गुजर चुके हैं। अगले मूवी का नाम है आन, आन 2004 का एक फिल्म और ये फिल्म का एक नगमा जो मिलकर गाएंगे अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा पौडवाल, अनु मलिक ऑफ कोर्स इनकी साज और संगीत पर, कि जब तक रहेंगे सीने में मेरा ये दिल। एंजॉय।

भंडाकर का डायरेक्ट किया हुआ और अक्षय कुमार और क्या नाम है लड़ा डट्टा, इन दोनों पर जो ये गीत पिक्चराइज किया गया है, इन सभी ने काम किया है। और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ शॉटगन सुदर्शन सिन्हा भी है, सुनील शेट्टी, पारेश रावल, रवीना टंडन, प्रीति जहांगीर, जैकी श्रॉफ, मोहन जोशी, इरफान खान। पर्सनल इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं। इस गीत के बाद ब्रेक होंगे और वो भी 7 बजे का। फिल्म का नाम विरोधी और ये नीघंत का फिल्म है, 1992, देवखोली जी का लिखा हुआ, नाइटिंगेला शाहजी और द टाइगर, कुमार सानू, अनु मल्लिक की साज और संगीत पर, राज कुमार खोली फिल्म का डायरेक्टर और अरमान खोली हर्षा का एक फिल्म जिसमें धर्मेंद्र भी, अमजद खान और गुलशन ग्रोवर। मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, जब तक रहेगा सीने में दिल, तुमको तो बस ही चाहूंगा। अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजें, समीर का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, अनु मल्लिक की साज और संगीत पर ये दोनों ने मिलकर गीत को गाए हैं। फिल्म का नाम आन और आन 2004 का है। मधुर

मून ने संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

0: क्या है क्या है
1: वो तुझे काम क्या है
2: तेरा नाम क्या है और तुझे काम क्या है मेरा नाम जानकर हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज और साथ दे रहे थे अलका याग्निक। मेरे प्यारे सुनो, ये खूबसूरत गीत इंदवर साहब जी का लिखा हुआ नगमा है और फिल्म का नाम नाम और निशान। नाम और निशान अजनी हथिन सीफ नन तख तख। मेरे प्यारे सुनो वालो, 1987 का जो फिल्म है, अजय केशव जी ने डायरेक्ट किया है और संजय दत्त, अमृता सिंह, जिन पर ये नगमा भी पिक्चराइज किया गया था फिल्म में, इन दोनों ने काम किया है। और इन दोनों के अलावा ग्रेट सुपरस्टार शशि कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर, सुरेश ओबेरॉय, निरूपा रॉय और कौन है, सीमा देव, मैं देख रहा हूँ विजू खोटे, कमल कपूर, हाँ जी बिरबल। मेरे प्रिय प्यारे सुनने वालों, 16 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 7 बजकर फिर एक बार तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका यारों का यहाँ रतन राम दुलारे पांडे और स्टेशन का नाम उजाला रेडियो पेश कर रहा हूं एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतन नाम से। फिर एक बार कुछ हफ्तों के बाद बैक टू द फ्यूचर और आज अन्नू मलिक जी का प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम हमने सजाए थे वेकेशन से पहले। फनाह इज द फील्ड में मूवी सॉन्ग्स हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत नगमाएं, नगमाएं शायद जो आप आजकल कम सुनते हो लेकिन जो यकीनन खूबसूरत है। और कुछ नगमाएं ऐसे हैं जो आप बहुत ज्यादा सुनते हैं हीर ऑन यू आर और शायद या सोनी वेट वार या अंदर सो मुतोर नर उजाला रेडियो। तो मेरे प्यारे सुनो, हम प्रोग्राम सजा रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से और 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। आपको ये भी मालूम रहे मेरे प्यारे सुनो कि कल मोरखन दोन रख 13 तारीख अगस्त को सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे और जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम 8 बजे से रात्रि में 11 बजे तक 3 घंटे लगातार प्रोग्राम दिल की आवाज विद रोमांटिक सॉन्ग्स, ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स हियर ऑन यू आर जिस मोर्ख इन 7 रख बने करो 15 तारीख अगस्त को सैटरडे नाइट फीवर पेश करेंगे लोकल प्रोग्राम। और कुछ हफ्ते हमने प्रोग्राम सजाया नहीं लेकिन मैंने प्रोग्राम को देखा है आने वाले शनिवार का एंड बहुत सारे गाने हैं जो रिलीज हुए हैं और सभी नए जितने भी रिलीज हुए हैं आपके खिदमत में पेश किया जाएगा और उनके अलावा भी कुछ पुराने लोकल्स हमेशा की तरह। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि कल रात्रि को और शनिवार को आप सभी भी भरपूर मेरा साथ देंगे। और मेरे प्यारे सुनो वालों, अगले गीत की ओर, एक समीर का लिखा हुआ नगमा जो है जो अन्नू मलिक के साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे, द टाइगर्स, कुमार सानू और सुनिधि चौहान, फिल्म का नाम अजनबी और अजनबी 2001 का जो मूवी है। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।

יא יא יא יא ביוטיפול, מירי פרס אין לנו חופסורת גית. מירי זינדגי מי אג'נבי כא אינתזאר אה, אור מי כא קרו, אג'נבי כא מוג'ה תו אינתזאר אה. סונידי צ'אוהן אור דה טייגר אוף בנגל, קומר סאנו כי אבאזי. סמיר כא לקחה הוא הגית, ये दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं अनु मलिक जी के साज और संगीत पर 2001 का मूवी अजनबी से हमने नगमा को भी निकाले हैं अब्बास और मुस्तान बर्मा वाला फिल्म का डायरेक्टर और बॉबी डेल करीना कपूर जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है काम किए हैं मूवी में और इनके अलावा अक्षय कुमार बिपाशा बाजू Johnny Lever aur kaun hai Dalip Tahil Sharad Saxena mere pyare sunal aapko to malum hai radio par kafi charcha hue hai 9 din baki hai mere pyare sunwalo 9 din jabki aap fastway ka ticket aap jo khareed sakte hain for hai lakh price तो देरी मत करना क्योंकि तीसरे फास में टिकटें बहुत महंगे हो जाएंगे और हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों ब्रासा फेस इंडोर समर एडिशन जो उचाला रेडियो रचा रहे हैं 29 और 30 अगस्त डेनहाग शहर में और वो भी जिया इवेंट सेंटर पर टिकटें आप खरीद सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों ब्रासा फेस .nl पर और क्या कहूं के आने वाले हैं कौन कौन है जो आपका दिल बहलाएंगे वहां पर आप किसी भी आर्टिस्ट का नाम लो हमारे हॉलैंड कैलेंडर में दी इसर फॉलो ऑन सोशल्स एंड होप लक्लाटर ओकन टाइमलाइन कि कौन दिन कब का हुई Maar natuurlijk 29 of 30 augustus, mijn pierre is in Oalo. Jo, over 2,5 weken, jo, dat jij jaga, Gia Event Center Den Haag met Brazzaves. 2026 Indoor Summer Edition. Or we bij 2 bajé, duperko, ratri met 1 bajé tak. Dat is voor zaterdag. Or zondag ke jo hem baat keringe, to 2 bajé se. 12 बजे till midnight the best music formats and artists out the scene तू जाने तो हम लोगों के सीन में चाहे वो हिंदी पॉप है सरनांग पॉप है सभी रहेंगे फूड प्लाजा भी रहेंगे लाउंज करने के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा एक ग्रैंड हॉल फॉर फुल पैक एंटरटेनमेंट और एक हॉल जहां पर लगभग 10,000 लोग आ सकते हैं और आप आइएगा मैट एंड स्माइल एंड मैट एंड पॉजिटिव फाइव हम लेकर तो फेस्ट 8,50 €, 8,50 €. टिकटें आप खरीद सकते हैं ट्वीट फास में और आपको बचे हैं सिर्फ 9 दिन ब्रासा फेस्ट के लिए Just check mere pyare se nolo brassafest.nl aapke TikTok ke liye and check ook onze socials tarah tarah ke suchnaen hum wahan par chhapte hain and natuurlijk blijf afgestemd op UR for the latest information Mohammed Aziz mere pyare se nolo aur Anuradha Padwal Anand Bakshi ji ka likha hua geet dono milkar gaayenge अनु मलिक के साज और संगीत पर फिल्म का नाम डूट काकर्स और ये फिल्म 1990 का है नेहंत पेश करता हूं गीत तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे

दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, अपनी खूबसूरत आवाजों में मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल जी ने ये खूबसूरत गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ मिलकर गाए हैं, और वो भी अनु मलिक के साज और संगीत पर। 1990 नीहंती नीहंत का फिल्म दूध का कर्ज से हमने खूबसूरत गीत को निकाल कर आप तक पेश किया है। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर अशोक गायकवाड़ है और जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी जिन पर यह गीत भी पिक्चराइज किया गया है मूवी में, इन दोनों ने काम किया है। वर्षा उस गांव कर, न इस गांव लेकिन उस गांव कर भी मूवी में है। अरुणा ईरानी, अमरीश पूरी, प्रेम छोपरा तो मेल्टर, सदाशिव अमरपुरकर, रजा मुराद, गोगड़ कपूर, गुलशन ग्रोवर, राम मोहन बॉब क्रिस्टो, सुधीर मोहन छोटी और कमल कपूर, और दूर वहां देख रहा हूं बीरबल जी को और यूनुस परवेज। एक झलक भी घड़ी की तरफ अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, नौ मिनट तो गुजर चुके हैं सरे 7:00 नीख मिनटों फोर क्लॉक फन हालफ आह हो चला है, और ले चलते हैं अगले मूवी की ओर। आयुत मोये यार नीह तीन फाइव नीह 1995 फिल्म का नाम टक्कर। एक गीत रानी मलिक जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें और अनु मलिक की म्यूजिक। दिल गया हाथों से क्या बात है, पेश करता हूं हीरो निवार।

रानी मलिक जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी अनु मलिक के साज और संगीत पर। टक्कर फिल्म का नाम और ये फिल्म 1995 का है। निहत इन फैव निहत भरत रंगचारी ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है। सुनील शेट्टी, सुनीली बेंद्रे, नाजीरुद्दीन शाह, शाफी इमामदार, राकेश बीरी, अर्चना पूरन सिंह, टिकू तलसानिया का फिल्म। कुछ एप्स आए हैं मैं देखता हूं। आइलिन जी एट हार्लेम बहुत बहुत धन्यवाद। आमस्टरडम सेंट्रम का प्रभा जी, प्रभा बहुत बहुत धन्यवाद। आमस्टरफीन का सुशीला, चंद्रिका सिंह जी के ऐप आए हैं, दिल से धन्यवाद। आईफी जहांगीर ओकत आमस्टरडम, आईफी जी शुक्रिया, डंक्यूवेल। और ब्रेडा शहर से मफराव एन मनेर बिहारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ऐप के लिए। आमस्टरडम का रिया कल्लू जी, थैंक यू वेल, धन्यवाद रिया कल्लू जी। और आमस्टरडम का माइस सीताराम, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। और मेरा बड़ा भाई, मेरा यार नरेश दिहाल भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं आमस्टरडम शहर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के ऐप के लिए। आप भरपूर एंजॉय करें अनु मलिक जी का जो प्रोग्राम फीर द है ना, फीर द जो हम सजा रहे हैं हियर ऑन यू आर विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो इन्होंने अपना संगीत दिए हैं, जैसे कि फिर एक बार कुमार सानू, अब की बार कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ गीत जो मिलकर गाएंगे पेश करने जा रहा हूं। ये नगमा मेरे प्यारे सुनोल, ये भी रानी मलिक जी ने लिखा और कुमार सानू और कविता जी गीत मिलकर गाएंगे कि आज अकेले में हम दोनों मिले हैं पहली बार। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनोल लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के सीडियो रतनम से।

तेरा चेहरा ना देखूं अगर रोशनी मेरी किस काम की यादन मखर खून वेरन अनसोंस फॉर डस्टरिंग को मोहर अगर आपका चेहरा ना देखूं क्योंकि आपका चेहरा तो मेरा सूरज है En volgens mij is het al op de hoogtepunt of al geweest. Studio Kenyahan Bahar. Is het wel wat donkerder geworden? Ik heb de licht aan moeten doen. Zonsverduistering, mijn repair is in al 90% Hamare is deze meer. In Siberië was het daar natuurlijk het eerst. Heb ik begrepen, gelezen. En dat was ergens 5:50. Or Spanje mee, to ik dem 100% honge. To wahan par ik dem andhera hi andhera honge. Oké, maar laat dat. Aap sab kuch pad sakte hain, news par dekh sakte hain, Google kar sakte hain. Tamam information aapko milega. Filhal to geet jo humne chalaye, break ke baad, Vinod Rathore aur Alka Yagnik ki awaazein इंदवर साहब जी का लिखा हुआ गीत रोमांटिक सॉन्ग ये दोनों ने मिलकर गाए हैं अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं हियर ऑन यू आर और वो भी बैक टू द फ्यूचर में इन दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं 1995 का फिल्म राम शास्त्र से हमने नगमा को निकाले और राम शास्त्र का डायरेक्टर संजय गुप्ता यकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला दीप्ति भटनागर आदित्य पंचोली अनुपम खेर दारा सिंह जगदीप भरत कपूर जॉनी लेवर अलोक नाथ टिकू तलसानिया और सुधीर का एक फिल्म है मेरे प्यारे जिलो मैं देखता हूं घड़ी की तरफ तो 10 मिनट बाकी हैं सरे 8 बजने में 3 मिनट फोर द क्लॉक फन हाल्फ 9 मेरे प्यारे सिनेमा 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर कल रात्रि को आपके सेवा में हम फिर हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज और वो भी 8 बजे से रात्रि में 11 बजे तक 3 hours लंग 3 घंटे लगातार दिल की आवाज कल रात्रि को हम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट पेश करने वाले हैं हियर ऑन यू आर स्टूडियो रतनाम से चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे लोग कहते हैं कि प्यार जो होते हैं चोरी चोरी बहुत खूबसूरत होते हैं मैं कहता हूं एक वेतन दले हम इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा इधर इन मुझसे लवेट रानी मलिक जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी जी मिलकर गीत गाएंगे अनु मलिक के साज और संगीत पर और ये रोमांटिक सॉन्ग निकाल रहा हूं 1993 का मूवी फिल्म फूल और अंगार जिसका नाम है एंजॉय

चोरी चोरी दिल में तेरा चुराएंगे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजें, रानी मलिक जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए, अन्नू मलिक जिसका हम प्रोग्राम सजा रहे हैं इनके साज और संगीत पर। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों फूल और अंगार, फिल्म 1993-1993। सलीम अख्तर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अशोक गायकवाड़, और मिथुन चक्रवर्ती, शांति प्रिया, सोनम मनीष बैल, परेश रावल, आसरानी साहेब जी, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर का एक फिल्म। शारदा ऐतारनम दंकीवेल, आपके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम कहेंगे भी चित्रा जी को और हेर एंड्रू अयोध मार्सब्रुक। इफोन दौलत है दनहा दंकीवेल, शुक्रिया आपके ऐप के लिए। और दंकीवेल शुक्रिया भी हम कहेंगे दनहा का मिक, दंकीवेल मिक आपके ऐप के लिए। आप सभी भरपूर एंजॉय करें बैक टू द फ्यूचर, आधे घंटे और ये प्रोग्राम सेवा में जो हम सजाने वाले हैं, तो आप एंजॉय कीजिएगा विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनो वालों, फिल्म का नाम है खतरनाक, और ये जो फिल्म है 1990 का है, नीहती नीहती। और ये खतरनाक का जो गीत हमने चून करके रखा है, एक नगमा अभिजीत जी का गाया हुआ और समीर और इंदवर का मिलन, ये दोनों महान कवि सॉन्ग राइटर शायर मिलकर गीत लिखा है, अभिजीत गाएंगे और रोमांटिक सॉन्ग है। अन्नू मलिक संगीतकार, पेश करता हूं सेवा में।

आसमां पे बैठी चांदनी, अभिजीत की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत नगमा, रोमांटिक सॉन्ग, समीर और इंदवर जी का मिलन, और ये दोनों शायर सॉन्ग राइटर्स मिलकर गीत लिखा है और अभिजीत ने गाए हैं अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। 1990 नीहती नीहतक का फिल्म खतरनाक से हमने ये गीत को निकाले हैं। भरत रंगचारिया फिल्म का जो डायरेक्टर है, और संजय दत्त, फारा, अनिता राज, किरण कुमार, अनुपम खेर, गोविंदा, जॉनी लेवर, इन सभी का एक फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, जैसे मैंने कहा, कल रात्रि को मोर्ख डोंडाख 8 बजे रात्रि से 11 बजे रात्रि को सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड द ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स। 3 घंटे लगातार आपका साथ देने आएंगे लाइव एंड डायरेक्ट QR के स्टूडियो रोटरडम से। बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी भी भरपूर मेरा साथ देंगे। इन 7 रख आने वाले शनिवार सेवा में भी हम हाजिर रहेंगे लेकर वो लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। 5 घंटे लगातार आपका सेवा हम करेंगे शनिवार के रात्रि को 7 बजे से टिल मिडनाइट। तुझे प्यार करते करते, अगले गीत के बोल, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, क्या बात है। इंदवर का लिखा हुआ ये गीत, अलका याग्निक की आवाज, अनु मल्लिक संगीतकार, मेरे प्यारे सुनवालो, नजायज फिल्म का नाम, और ये फिल्म जो है 1995 का है। रिमेंबर दिस इज यूआर बैक टू द फ्यूचर, अनु मल्लिक का प्रोग्राम सजा रहा हूं फिर एक बार, और वो भी रात्रि में 9 बजे तक।

तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, या एक बार संपलन अलका याग्निक का फैशन पेश करने का, लेकिन गलती से और होता है लाइव प्रोग्राम में, सोनू निगम का फैशन हमने आप तक पेश किया है। ये गीत मेरे प्यारे सुनने वालों इंदवर का लिखा हुआ है और अनु मलिक थे संगीतकार। नजायज फिल्म का नाम, 1995 का मूवी, 1995। महेश भट्ट जी ने डायरेक्ट किया है, अजय देवगन, जूही चावला, नजीरुद्दीन शाह, दीपक तिजोरी, रीमा लागू, आशीष विद्यार्थी, गुलशन ग्रोवर, इन सभी का फिल्म है। टिक्कू तलसानिया भी फिल्म में शामिल है। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम के एंड की ओर, एनालिसिस तो दो नगमाएं जरूर हम पेश करना चाहेंगे। तो कतिल शफाई का लिखा हुआ एक पॉपुलर सॉन्ग दर्द भरे गीत में गिना जाता है, पेश करने जाऊंगा। द टाइगर कुमार सानू गीत गाएंगे, अनु मलिक की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम सर, और सर जो है 1993 का फिल्म है, नीघंत इंद्रिय नीघंत। हमसे बदल गए वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग

हमसे बदल कर, हमसे बदल गया है वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। कुमार सानू की आवाज, कतिल शफाई जी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार ऑफ कोर्स इसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं अनु मलिक सर। फिल्म का नाम 1993 का जो फिल्म है, नीखंत महेश भज्जी का डायरेक्ट किया हुआ, नाजुरुद्दीन शाह, परेश रवेल, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री का फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज जिस तरह से और जिस प्रेम और प्यार लगन के साथ प्रोग्राम को हमने बनाए हैं, सजाए हैं, आप सभी ने भरपूर ही एंजॉय की है। उजाला रेडियो पर यह प्रोग्राम अगले हफ्ते फिर हम सजाएंगे बैक टू द फ्यूचर। लेकिन उससे पहले कल रात्रि को मोरखनाफन दमेने कर में दिल की आवाज रात्रि में आज से 11 बजे और शनिवार को रात्रि में 7 बजे से 12 बजे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, डंकी वेल। रहा भूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल। बाय। सॉन्ग फ्रॉम द मूवी शबनम, अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौर, फैज अनवर का लिखा हुआ गीत, अनु मलिक का म्यूजिक, तेरा नाम लिखकर होंठों पे। बाय बाय।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल न...

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफ, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।